0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य के अड़ूं कामयाबी फारवेरी का वाम बेनुं ता कामयाबी फारवेरिंग आतों इरुशाद हो दम बेनुं ता व्यापार फुलाकुरम बेनुं ता
1: वुन दंकार
3: कम में होनी हिरु दोहे गेहिंदुनु नुआगट फन्ना रहेगा रिपीट होनी हिरु दोहे हावीरु हाथरु गट फन्ना रहेगा आदि आदित्त दोहे हावीरु हाथरु गट फन्ना रहेगा
1: इंगा सत्तर से एक साढ़े स्नो एक किलो हर्ट्स मीडियम वेव अड्डे नो मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: हमें कनी दिवे ही राज्य के अड़ों

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाही पे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? मियोती फाही पे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला दो फाही पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अधि मीडिया नेट बिल कस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पे क्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबे वायर बिल नो देखी गेंग लारी वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुचे है ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही।
3: टेक के दुनिया अंग अलगन में कुम्मे हफ्ता को मिकुरा दातुरु तन निमे दुआ हा मरा क्या वेजे। अलगन में कुरा कुम्मे दातुरा की मे दातुरु तन निमे दुआ हा अलगन में ना बदल वा दुआस गैक को दे दातुरु तके। टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कुंफुनी तकों के नमन दाबादल तका बलानोला दूर कोलमा की

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? म्योती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबाय वायरु बिल नु देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुझे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही।
0: टेक टॉक्स
3: टेक्नोलॉजी के बड़े ती कुंफनी तक उन आपद्वेस्तानी अलगन में के दुवही दिरियुलम फसे हकुर मटका एकी कहला ईजाद तका ए ईजाद तकं एकी बदल तक इन्नमु टेक्नोलॉजी के गुरह हैं अलगन में नंग इतर दत्तर तके कुरे विचे मेवस एक तरह गुणाले वेने कामी आप दत्तरे मेयद के दत्तरुं अलगन में ना टेक्नोलॉजी या साइंस के गुरह हैं एकी दिमालों तफातु ईजाद तका कुंफनी तकुं ईजातक गेनमदा एत फन्नी बदलत के फेनी आदि अडुए सिविजे मेगे इतरु गुरहयंग एसपवा तफात बदलत के विस्वनी फेनिफा नमा इस्मियदुगे दतरु निम्माला एम्बुरी अळगुडमेगे दुनियादा दतरु फशन जेहे वगुतु मिहार मिवनी जेहिफा टेक्नोलॉजी या साइंस के अलीगा इंसानों होदमु गन्ना तफात कुरियरुं तका इंसानी आदका दया टेक्नोलॉजी के सबबुं गन्ना इंगिलाबी आ बदलतोगे मालूमात तका इम्मे फोगे खबर तं होदमा अन हफ्ता कविस अलगन में नायको टेक के दुनिया दतरु कुरुमा तैयार वेगेंती बेने कमा उम्मीद कुरा कुरी हाय हुं तेरी नविस बाच वेरी वकुत कुलकंगे दे वस्सलाम अलैकुम प्रोग्राम हुशेली अलगन नाफिस आब्द रशीद प्रोग्राम का हिमनाली खबर तंग हुशेली मोसा रश्वान रिपोर्ट तंग हुशेली अजीजा फारूक अदि मिजना अहमद प्रोग्राम उफद्दा गुलवाली मोसा रश्वान मी दिवी राज्य गड़गे उफित्तम

0: Ate berhenti ada dua ati diwaraja kaum Islam niu mae kig awam na fikir kita ni the team kulantering official na salam kalla di the team kulantering kulantering konek kulantering ka salam kalla menda mazhab kita start di FM berais niha berais nak kalla asal berita la kita kita kita kita kita kita kita kita FM के दिदे सतर को दिही पैक में हार बताने राज्य के टीम में हार मिदाने घून को दम टका को मिसर का मशर को दम अधे दुवेला सक में हर कैतिर दो मिदाने फोटो एक तैयारों में दामन दाल में फेने हमें आके का बांग्लादेश के टीम में समझने फोटो एक तैयारों में टका में हार में हम के बंचा दिमाग दनवात में होते में हम बंचा दिमाग दिमाग मारु कल लागे आधे मेरे के और मैं राज्य के फुर्तम एक अगर बेहदार फुर्तम फिर ने हुसैन शरीफ गोल के पर गोतों दें कैप्टन के अली फासिर दें गासिम कैफ इब्राहिम आयसम अब्दुल्लाह इब्राहिम दें हायशम हसन हमदान अली मोहम्मद इलान इमरान हसन इनाज इब्राहिम वहीद हसन आदि अहमद आयहम एक इतरों बांग्लादेश के टीम के कुलंतर ना बेहदार होगा मिहार में तो अनुफेन है कंपनी के टीम के कैप्टन आदि राज्य टीम के कैप्टन गुरुत्व मटक का मटक लाया में तभी देते हैं कैप्टन और मिहार एफए के गांव में एफए के दीदा मिहार में हदिया हद बादिया को तो बदल कर ले बांग्लादेश टीम मिहार गोतेंग और ना ही बने में गुरुत्व फहोगा में फिर नहर कहते का बेहदार बांग्लादेश फरहार होगा में राज्य सहारा में दंडों सहारा भी कोड़ गाते राज्य गांव में टीम दंडों के मजिदी में काबिज कोड़ का फर्शा आगोता आलोगन में गब्बर करवेनी हर कहते का फिर नहर आधे गोता मिहार में होती मेरे के रेफरी ना के बेरो के ऑफिसर दो ये तो सरकार ने सेनेटरल तीन दें फर्स्ट रेफरी की क्रिस्टोफर पीट सेकंड रेफरी की मोरली थरन फोर्थ रेफरी की अश्विन दें एच रेफरी की शाहिर अहमद मिहार रेफरी मिहार सेंटर से कल कह रहे कुछ मर्ड कर दें बोला कोटम रात को सपोर्ट को बयान दादा मर्ड कर दें मेरी डेटिंग के कुलन तेरे दना मर्ड कर दें मेरे को तो और मैं फिर क्या मिलता है डेटिंग के कुलन तेरे में एवेदा मैं हूँ वह द कलम गेंदा मंजर दंडक बयादा रुक आलम कुलन दना आदि बर फुदेवर का दें हिन्या बरे मित्र का बर बयादा रुक बरे तंकोले मैं हूँ गिना गोते का मेरे फिर ने तंकोले फोर का दरे का वेगा हिंगा दानक मार्म ना फिर ने मौसम स्वार रीत वारा हिंगा मरे गोत का और मैं फिर क्या मिलता है तेरे फिर ना और मैं गिनते हैं मैं डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में द हवीर मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बदल कर मैच में गेंगोसा पाकिस्तान में अफगानिस्तान मैच देश में कुरे में होता दिन मेरे आगे मैं मैच का बदल कराने ekolong Bangladesh na ekolong mewati dewi raja adi mewani mbarat ke bis macam mula nuwe hendam es mereka keswara ummi dire gotu kahuri habi apa nus ama bis na ingat adi mian hisab mewati mereka ke macam fashion ama kurang tamu mian hisab orang shimri awal kallan
1: adi syukuria Ramiz adi mereka ke macam ki Bangladesh waram muhim macam final dewi mataka mian duga habi macam

निकम्मा को इंसान की हैसियत निकम्मे त्यांगिने की हैसियत आना तू आ कुस्ती दे कुदिरना का माँ फिर नूदे बैने ती दे कुदिरना माँ फिर नहीं।

और हमारे प्रोग्राम का मोटो, सबसे पहले सबसे तेज सबसे वीर। ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है, और जंगल में हमेशा राज करेगा।

0: अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो, समझे?
1: हर चीज करो, लिमिट के अंदर, लेकिन प्यार लिमिट के बहुत बाहर।
2: नहीं बनना है मुझे जिया का पिया।
3: दुकानपुर मैन आर नॉट कट आउट फॉर मैरिज। आज तक मेरी फैमिली किसी ने शादी नहीं की, डिड यू नो दैट?
4: यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों में, जहाँ रेत देखते हो आप लोग लेट जाते हो।
5: Hi, I'm Anjali.
6: I'm married. I mean, Vinay. Vinay Malhotra.
7: आज जरूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
1: Happy anniversary.
5: पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया।
1: ओ, ये तो गड़बड़ हो गई। अब जो गिफ्ट मैं चाहूंगा वो देना पड़ेगा।
5: आशु नो बदमाशी।

0: नानी, आई नीड अ वीजा टू गेट टू उदयपुर.
1: आपको उदयपुर जाना है, हम आपको उदयपुर ले जा रहे हैं. अब इस बीच में आपको भीर जाला देखनी.
2: जिया, यू नो आई लव यू राइट?
3: मैं शादी नहीं कर सकता.
0: कोई देख लेगा.
4: रे बावली, कौन क्या देखेगा? आज तक मन ने कुछ ना देखा. प्लीज आज ना रोक.
0: कौन है ये बाबू?
5: राहुल, कामनी के बचपन का प्यार.
2: हमारा घर जैसा भी हो, हम साथ मिलकर उसे खूबसूरत बनाएंगे. लेकिन अगर तुम साथ ना रही तो ना मेरा आज है

0: If he marries someone else, I'll kill myself.
1: इसकी जुबान नहीं समझता तो क्या गया? इसकी आंखों की भाषा तो समझता हूँ। इसे कह दो कि राजू इसको इसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा।
2: शादी के 15 साल में तुम्हें नहीं लगता हमने कुछ खो दिया है? वो प्यार, वो एहसास, वो एक्साइटमेंट, कहाँ है वो सब? कहाँ है सीमा?
3: शायद वक्त बदल गया बिना, पर मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ।
4: और अगर आज राहुल कहे कामनी आई लव यू,
5: शिवेन, प्यार हर वक्त साथ रहता है, क्योंकि प्यार वक्त से नहीं, उससे किया जाता है जिसके साथ वक्त गुजारते हैं।
6: सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है जिया।